बीबीसी दुनिया में आज देखिए अमेरिका ने अपने किस सहयोगी देश को दी बम से उड़ाने की धमकी। ईरान और अमेरिका के बीच डील की मियाद हुई पूरी मगर जंग खत्म करने पर सहमत नहीं हुए दोनों मुल्क। इस बीच ट्रंप ने सहयोगी देश ओमान को दी बम से उड़ाने की धमकी। ईरान और अमेरिका के बीच डील की मियाद हुई पूरी मगर जंग खत्म करने पर सहमत नहीं हुए दोनों मुल्क। इस बीच ट्रंप ने सहयोगी देश ओमान को दी बम से उड़ाने की धमकी। ईरान को लेकर अपने सहयोगी देश दक्षिण कोरिया पर भी ट्रंप ने दिखाए सख्त तेवर, कहा उत्तर कोरिया को उकसाता है दक्षिण कोरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से की बात, क्या है मकसद जानेंगे कार्यक्रम में। वीकेंड में रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले कर दिए जंग के और भी ज्यादा बढ़ने के संकेत, कैसे हैं हालात दिखाएंगे रिपोर्ट। और बीबीसी ने की अफगानिस्तान की उन महिलाओं से बात जिनके तालिबान के 5 साल के शासन के दौरान खत्म हो गए हैं अधिकार, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं आपके साथ पायल भुयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 24 घंटे के अंदर अपने दो सहयोगी देशों पर बेहद सख्त बयान दिए हैं। एक को उन्होंने बम से उड़ाने की धमकी दी है और दूसरे के साथ सहयोग घटाने का ऐलान किया है। इन दोनों देशों पर ट्रंप ने जो बयान दिए हैं उनका नाता ईरान के साथ चल रही अमेरिका की जंग से है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ओमान ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत में रुकावट डालता है तो अमेरिका ओमान पर बमबारी कर सकता है। फॉक्स न्यूज के अनुसार ट्रंप ने फोन पर बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। रिपोर्टर के मुताबिक इसी बातचीत में ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ सीधा बैक चैनल से कांटेक्ट है। वहीं आईआरजीसी इस बात को खारिज कर चुका है। ईरानी अधिकारियों ने इससे पहले कहा था कि वो ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर एक समझौते को अंतिम रूप देने के करीब थे। अमेरिका और ईरान के बीच 2 महीने पहले 17 जून को जो समझौता हुआ था आज उसकी डेडलाइन तो खत्म हो रही है, लेकिन क्या जंग खत्म होगी सवाल अब भी बरकरार है। दोनों ही पक्ष अपने रुख पर अड़े हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए। फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान के मामले में वो

0: गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मिडिल ईस्ट ऑनवॉय जारेड कुश्नर ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। इसराइली अधिकारियों के मुताबिक आज की बैठक में उन मुद्दों पर बातचीत हुई जिन पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सकती है। इसराइल ने गाजा से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया है। रविवार को मिस्र, यूएई और सऊदी अरब समेत 8 देशों ने बयान जारी कर इसराइल के इस फैसले की निंदा की थी। इस मामले पर यरूशलम में मौजूद बीबीसी की मिडिल ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट योलांद नेल ज्यादा जानकारी दे रही हैं।
1: ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब इसराइल में आम चुनावों को लेकर काफी गहमा गहमी भरा माहौल है। चुनाव अक्टूबर के आखिर में होने हैं और पीएम की लिक्विड पार्टी इस समय चुनावी सर्वे में पीछे चल रही है। वहां की राजनीति में किस तरह की मांगे उठ रही हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धुर दक्षिणपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर ने एक पॉडकास्ट में गजा में बंधक रहे रोम ब्रासलावस्की से बात की। उन्होंने कहा कि वो पीएम की मौजूदा नीति से सहमत नहीं है।
0: और बात रूस यूक्रेन जंग की, दोनों ही नेता जो हैं वो जंग के और भी ज्यादा बढ़ाने के नतीजे भुगत रहे हैं दोनों तरफ से। रूस के अधिकारियों का कहना है कि आज बेलगोरोद इलाके में यूक्रेन के मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। ये हमले उस घटना के एक दिन बाद हुए हैं जिसे अधिकारियों ने इस साल यूक्रेन का सबसे बड़े पैमाने का हमला बताया था। इसमें कम से कम 7 लोग मारे गए थे। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने 24 घंटे में 1500 ड्रोन से हमले किए थे। इन हमलों के ठिकानों में कीव का एक मशहूर किताबों का बाजार भी शामिल था। और इस बीच यूक्रेन में वीकेंड के दौरान रूस के ताजा हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव से बीबीसी संवाददाता डैन जॉनसन की रिपोर्ट।
2: रूस ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो यूक्रेन की राजधानी और यूक्रेनियों के जीवन के आधार को निशाना बना सकता है। इस बाजार में ये हमला रविवार को हुआ। हमले में लोग घायल हुए लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। इनमें हर एक स्टॉल किसी न किसी के कारोबार और रोजी रोटी का जरिया था और कुछ ऐसा जो उन्होंने बहुत प्यार से बनाया होगा। लूबा अपने वाइनल रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हुए कहती हैं कि ये बहुत मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे 8 साल तक किसी बच्चे की देखभाल करना, उसमें मेहनत करना और फिर अचानक सब कुछ खो देना। रूस का कहना है कि वो उन जगहों को निशाना बना रहा था जहां से सेना या हथियारबंद लोगों को सप्लाई की जाती है, लेकिन ये तो एक बाजार था जहां सेकेंड हैंड किताबें, पोस्टर्स, रिकॉर्ड्स और दूसरी चीजें बिकती थीं। और मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद एक हफ्ता पहले यहां आया था। मैंने यहां परिवारों को सस्ते दाम पर सामान खरीदते और मोलभाव करते देखा था। लिलिया यहां राख से अपना कुछ सामान बचाने आई थी।
1: किताबें हमें बचा रही हैं और इन्हें खोना मतलब अपना दिल खोने जैसा है। मुझे माफ करना।
2: पूर्वी यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं। रूस का दावा है कि वो सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन ज़ेपोरिजिया में एक घर के तबाह होने से 60 से 70 साल की उम्र के एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई। यूक्रेन ने भी रूस के अंदर तक जवाबी कार्रवाई की है और ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बरीज फिर से उसके निशाने पर थे। मॉस्को के मेयर ने बताया कि शनिवार रात शहर में 600 यूक्रेनी ड्रोन से हमले हुए। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई हमले हो चुके हैं और अब ये पता है कि इसमें वो ब्रिटिश ड्रोन शामिल थे जो ब्रिटेन में बने थे। उनसे यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरीज और वेयर हाउसेज पर हमले किए। मकसद है रूस को इस जंग के असर का एहसास कराना। लेकिन यूक्रेन में आसमान सुरक्षित न होने की वजह से लोगों की जान भी खतरे में है और उनके जीने का तरीका भी। बीबीसी संवाददाता डैन जॉनसन की रिपोर्ट।
0: खबर अब अफगानिस्तान से। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 5 साल बाद वहां की महिलाओं ने बीबीसी को बताया कि कैसे उनकी जिंदगी पर पाबंदियां लगा दी गई हैं और भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदें कैसे खत्म हो गई हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन बैन है। उन्हें अपनी आवाज उठाने या पार्क जाने तक की इजाजत भी नहीं है। 5 साल पहले अफगानिस्तान की सत्ता पर जब तालिबान ने कब्जा किया था तो बीबीसी की चीफ इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट लीज टूसेट ने रिपोर्टिंग की थी। लीज टूसेट फिर काबुल लौटी जहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है।
1: तालिबान की हुकूमत की सबसे बड़ी निशानी।

0: अफगान लड़कियां अंधेरे में पढ़ाई कर रही हैं। वो खतरनाक ढंग से तालिबान की नजरों से छिपकर पढ़ रही हैं। इसे सीक्रेट स्कूल कहा जाता है। ये दुनिया का इकलौता देश है जहां प्राइमरी स्कूल के बाद लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती है। 13 साल की ये लड़की यूनिवर्सिटी जाना चाहती है और वकील बनना चाहती है। ये कमरा सपनों से भरा है, लेकिन पकड़े जाने का डर भी उतना ही है।
1: अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो शायद हमारे साथ और हमारे स्कूल के साथ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन इस डर के बावजूद हम पढ़ने आती हैं ताकि कुछ सीख सकें।
0: क्या आपको अफगानिस्तान में अपना भविष्य दिखता है?
1: नहीं, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आगे क्या होगा, तब मुझे बहुत दुख होता है।
0: आपको उम्मीद कहाँ से मिलती है?
1: अपने भविष्य के बारे में सोचकर कि शायद सब अच्छा हो जाए।
0: आप बहुत बहादुर लड़की हैं।
1: शुक्रिया।
0: ये लड़कियां जानती हैं कि सिर्फ इतना काफी नहीं है, इसके बाद उनके लिए यूनिवर्सिटी का रास्ता बंद है। ज्यादातर नौकरियां भी अब उनके लिए बंद हैं। इसके बाद वैसा भविष्य नहीं है जैसे में वो जीना चाहती हैं। एक ऐसी जगह जहां महिलाएं अब भी काम कर रही हैं। सिर्फ महिलाओं का ऐसा कारोबार जहां प्लम जैम बनाया जा रहा है। इस वर्कशॉप में नूरी जैसी महिलाएं हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी।
2: 100% मैं 100% दुखी हूँ। मुझे अपनी डिग्री बहुत पसंद थी और उसे पूरा करना चाहती थी। जब मैं नौकरी के लिए अप्लाई करती हूँ, अपना CV भेजती हूँ या इंटरव्यू देने जाती हूँ, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की डिग्री मांगी जाती है, लेकिन मुझे वो मिली ही नहीं।
0: महिलाएं छोटी छोटी आजादियों को बचाए रखने में जुटी हैं, जबकि लगातार जारी हो रहे ऑर्डर उन्हें पीछे धकेलते जा रहे हैं। अब पार्क भी उनके लिए बंद है। अब ये सिर्फ पुरुषों की दुनिया बन गई है। 5 साल पहले महिला अधिकार कार्यकर्ता महबूबा सिराज ने काबुल में ही रहने का फैसला किया था, लेकिन उन्होंने बताया कि अब वो यहाँ से जा रही हैं।
3: मैंने जो कुछ भी किया, आज मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अफगानिस्तान में 24-25 साल बिताए, लेकिन आज मेरे पास क्या बचा है?
0: 5 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपका क्या संदेश है?
3: उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए, ठीक ठीक समझना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, समस्या कहाँ है, समाधान कैसे निकाला जा सकता है।
0: हम दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार पहुँचे। यही असली सत्ता का केंद्र है। यहीं से तालिबान के एकांत में रहने वाले अमीर ने इतने सख्त आदेश जारी किए हैं कि तालिबान के कुछ सदस्य भी उनका विरोध करते हैं। उनके मुख्य प्रवक्ता ने उनकी उपलब्धियों की तारीफ की।
4: 5 साल में शके अफगानिस्तान
5: 5 साल हो गए हैं। अफगानिस्तान न विदेशी कब्जे में है और न ही युद्ध हो रहा है। इन 5 सालों में अफगानिस्तान को फिर से खड़ा होने का मौका मिला है।
0: तालिबान की सत्ता में आने के तुरंत बाद आपने खुलकर कहा था कि इस्लाम के दायरे में महिलाओं को काम करने और पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। फिर क्या हुआ?
5: जी हाँ, हमने कहा था कि ये इस्लाम और इस्लामी कानूनों के मुताबिक होगा। इस समय महिलाएं वही काम कर रही हैं जहां उनकी जरूरत है और जहां इस्लाम इसकी इजाजत देता है।
0: जब आपको ऐसी खबरें मिलती हैं कि लड़कियां इसलिए अपनी जान दे रही हैं क्योंकि उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिखता, तो आपको कैसा महसूस होता है?
5: हम इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी पूरी क्षमता से सारी कोशिशें करेंगे।
0: अफगानिस्तान के लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। भयंकर सूखा पड़ा है। विदेश से मिलने वाली मदद भी लगातार कम हो रही है। जब तक तालिबान दुनिया के साथ अपने रिश्तों का तरीका नहीं बदलता, अब तक यहाँ जिंदगी और मुश्किल होती जाएगी। BBC संवाददाता लीज टूसेट की रिपोर्ट।
6: इस पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मेरा हैंडल है @pailbhuyan। आज के लिए बस इतना ही।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਬਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਸਵੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ
1: 1947 ਮੇ ਲਾਖੋ ਖਾਨਦਾਨੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਯਨਿਕਾ ਮਹਤਾਨੀ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਮੁਲਕੋ ਮੇ ਬਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਜੁਦਾ ਹੁਏ ਪਰਿਵਾਰੋ ਕੀ ਕਹਾਣੀਓ ਸੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਕਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਯਨਿਕਾ ਮਹਤਾਨੀ ਕਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਰਗੋਧਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਭੇਰਾ ਮੇ ਰਹਿਤਾ ਥਾ। ਆਜ ਭੀ ਉਨਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰਗੋਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਓ ਸਾਲਮ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ।
2: I have never been, but Bhera mein ek saniyo da mohalla kehlata hai aur wahan hai ek saniyadi haveli and usi haveli mein ye dono sab sani sab family udhar rahi, udhar they spent childhood and you know main bahut baatein sunti thi us haveli ki।
1: Nayanika Mehtani ke grandparents India chale gaye lekin unki nani ka khandan yahi piche Sargodha mein reh gaya। सालम में रहने वाले उनके मामू बांका साहनी बताते हैं कि मुस्लिम पड़ोसियों ने उन्हें प्रोटेक्शन दी।
3: मेरे दादा ही थे जी मोहन लाल साहनी, तो उनको जाने नहीं दिया लोगों ने, थोड़ा सा लोगों ने जब सहारा दिया, दोस्तों ने सहारा दिया तो रुक गए।
1: सेंसस के मुताबिक बांका साहनी की फैमिली सालम का वाहिद हिंदू खानदान है, उसके बावजूद वो आज भी अपने पुरखों की जमीन से जुड़े हैं, जहां बनी समाधि में उनके बुजुर्गों की अस्थियां दफन हैं।
3: मेरे को खुद भी यहां रहकर नहीं लगता कि मैं हिंदू हूं, क्योंकि मेरा में कोई फर्क ही नहीं पता लगता। मेरे सारे दोस्त मुसलमान हैं, मेरे सारे क्लास फेलोज मुसलमान हैं, हम एक ही बर्तन में खाने वाले हैं सारे के सारे, कभी किसी ने कोई इतराज नहीं किया।
1: नयनिका कहती है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स पार्टीशन वाले दिनों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते थे, बल्कि अपने बचपन और जवानी के किस्से सुनाया करते थे, जिन्हें सुन के वो बहुत इंस्पायर हुआ करती थी।
2: दे वुड टॉक अबाउट यू नो, जैसे सरगोधा में इतने कीनू के ऑर्चर्ड्स थे और मेरी नानी जी के घर के आसपास वो यू नो लेग ऑफ लैम्ब आता था और वो ओवरनाइट तंदूर में बाहर उसे पकाया जाता था, और वो अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे टांगे में दे वुड गो टू स्कूल। And my dadaji would tell me all these stories about how he ran away from school and got a tattoo on his arm with his best friend. Dono ne ek dusre ka naam apne Urdu mein tattoo karaya tha.
1: Film ki research ke liye visa delay hua, to unhone apni assistant Jassi ke saath Lahore se ek team apne purkhon ki zameen Sargodha bheji.
2: Maine na Jassi ko bola ki main aapki aankhon se pehli baar फर्स्ट हैंड ऐसे देख रही हूँ पटियाला में जब हमने सरगोधा बनाया। मुझे पता था ये सब झूठ मूठ है, ये रियल नहीं है, पर दिस वाज द क्लोजेस्ट के मैं गई अपनी नानी की के चाइल्डहुड में, तो बहुत इमोशनल था उस दिन मेरे लिए।
1: इंडिया और पाकिस्तान में जारी टेंशन के दौरान क्या मैं वापस आऊंगा जैसी फिल्म में दोनों मुल्कों के लोगों को करीब लाने में कोई किरदार अदा कर सकती हैं? नयनिका का जवाब था,
2: आर होप इज ऑलवेज दैट, सो वी डिडंट सेट आउट टू टेल अ पॉलिटिकल स्टोरी, द पार्टीशन इज वेरी मच द बैकड्रॉप। मुझे यही था कि मैं ऑनर करूं अपने दादा दादी नानी नाना को, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके लिए इंडिपेंडेंस और पार्टीशन एक साथ आए, और इंडिपेंडेंस

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-402-03 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 5

0: 8888-3660-6890 Lifeline Medical Clinic.
1: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी.
2: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब. Listening to Calgary's most popular radio. Radio Sabrang 94.7 FM.
3: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrang.
4: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-4003-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca.
0: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर.
1: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है.
0: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से.
1: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर.
0: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है.
1: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं.
0: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक.
1: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी.
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए. सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन. चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं. हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में. ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक. अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए. आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ. आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी. मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 7-8 PM, संडे 1-5 PM.
6: एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड. स्टूडेंट वीजा, विस्टर वीजा, सुपर वीजा, LMIA एप्लीकेशन, फैमिली इमिग्रेशन, प्रोविंशियल नॉमिनी एप्लीकेशन, सिटीजनशिप एप्लीकेशन विच लंबा तजर्बा महारत रखता है. तो हॉडी सहूलत लई मैं मनिंदर सिंह ढिल्लों इंद्रजोत कौर ढिल्लों एक छत हेठ इमिग्रेशन इंश्योरेंस दी सेवावां प्रदान करते हैं. सानू संपर्क करने लई 403-225-1111. मनिंदर सिंह ढिल्लों, एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड.
7: रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट.
5: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
8: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ. ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਟਰੰਪ 2028 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੂਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ. ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 22ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਟਰੰਪ 2016 ਤੇ 2024 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
4: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757।
3: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
5: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ।
6: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ, ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
2: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403

0: 4435 संपर्क करो।
1: अपने घर का दूजा नाम आ सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
2: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसी प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
1: वधिया घर खरीदना, पैसे बचाने ने, सिरदर्दी तो भी बचना, ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
2: सिर्फ घर खरीदण ले ही नहीं बल्कि वेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
1: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
2: रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
1: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचन दी प्लानिंग, मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जा विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor।
2: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
0: ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਖੁਦ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ। ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696। ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 587-617-4696।
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुज्जो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव,
1: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड,
1: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
1: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर 403-835-2222।

0: वासियो की तुसी लंबी लाइन अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चा दी या फिर बुजुर्गा दी इत्थे सारेयां लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सिद्धे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696 ओइसे स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार
2: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ़ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है
1: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208
2: बड़े सोचां च पए हो वीर जी की गल होगी
1: थक गए हैं घर लब लब के कैलगरी च घर खरीदना ता हुण बड़ा ही औखा
2: तुसी घर चंद्रमा ते लबदे होणे कैलगरी च नहीं आ नोट करो नंबर अरुण कौशल दा
1: कर लिया जी नोट फोन नंबर 403-618-2112
2: रियल एस्टेट दे सब मसलियां दा हल करनगे प्रेप रियलिटी दे मशहूर रियलटर अरुण कौशल
1: अच्छा जी अरुण कौशल लब के देणगे सानू घर
2: जी हां कल्ले घर नहीं प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होवे जां कमर्शियल घर खरीदना होवे जां बेचना प्रेप रियलिटी दी वड्डी टीम तो ਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-618-2112 ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲਸ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ ਸਭ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਮਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 403-903-6757
3: ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲਸ
1: ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
4: ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ
1: ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ
4: ਲੈ ਦੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ

0: समझ सकते हैं। कोई बड़ा औखा काम नहीं है, पर सिर्फ एक ही है कि बेबे तू बाहर जा आ जा, इहदे नाल बेबे नूं पता नहीं लगना। उन्हां नूं ओह रस्ता विखाया जावे, उन्हां नूं लाइब्रेरी तक पहुंचाया जावे ता जो ओह उत्थों कुछ ना कुछ सीख लैण। इहदे नाल ही मैं एक होर वेखनी आ कि भई इत्थे जिवें साडे हैगे ने बड़े सेंटर हैगे ने, एसोसीएशन बहुत बेटा चल रहियां ने, साडे कल्चरल एसोसीएशन ने, अगर तुसीं उन्हां एसोसीएशन दे विच जांदे हो ते तुहानूं उत्थे बहुत मदद मिल जांदी है, क्योंकि उत्थे तुहाडे वर्गियां भैणां ते तुहाडे वर्गे वीर हुंदे ने। तुसीं उत्थे बैठदे हो करदे हो ते बड़ी अच्छी उत्थे जानकारी सांझी करदे आ, जिवें कदी असीं कोई हैल्थ वाले बुला लैंदे आ ओह उत्थे लैक्चर करा दिंदे आ, कोई ट्रांसिट वाला बुला लैंदे आ बई तुसीं किवें बसां ते चढ़ना है किस तरह करना है। सो बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने उत्थे एक दूजे को सुन के पता लग जांदियां जी। असीं खुद जिहड़े एसोसीएशन वाले हुंदे ने ओह इनफॉर्मेशन जिहड़ी आ सांझी करदे रहिंदे ने, ते दूसरा सब तो वड्डा सुख हुंदा पीयर ग्रुप बणदे आ, सहेलियां बढ़ जांदियां ने, उह सहेलियां इकट्ठियां बसां ते चढ़ पैंदियां ने ते फिर आ जांदियां ने। मैं वेख्या इन्नियां साडियां भैणां जिहड़ियां ने इन्नियां तेज़ ने, तीन तीन बसां बदल के साडी एसोसीएशन दी मीटिंग ते आ पहुंचदियां ने, ते बाकी जदों कोई नवीं भैण आउंदी है उहदी सहेली बण गई उहदे नाल आण लग जांदियां ने। सो इह औखा नहीं है इत्थे एडजस्ट करना, सिर्फ कहण नाल नहीं होणा, घर चों बाहर निकलना पैणा, ते बाहर निकल के ते अपना एक थानू आला दुआला तब्दील करना पैना, एक पीयर ग्रुप जिहड़ा वा सेल पूरा जिहड़ा वा उह बनाउणा ही पैना है, जिहदे नाल तुहाडी आइसोलेशन जिहड़ी है उह टुटूगी। घर च तुसीं गल नहीं करदे, बाहर आके करदे हो। कई वारी मैं वेख्या कि साडा हुण एक्सपीरियंस इहो ही है कि भैणा गल करनगियां, उन्हां नूं पता है कि जिहड़ी गल इत्थे हो गई उह किसे तक बाहर नहीं जाणी, क्योंकि जिहड़ा उत्थे हुंदा ना बी बीबी बाहर जाके साडियां गल्लां करदी, सब तो वड्डा घर च ना ब्लेम इहो ही लगदा इह घर दियां गल्लां बाहर करदे आ, पर इत्थे आके जदों तुसीं गल वी करदे हो ते गल सुणदे वी हो ना, ते कोई गल किते वी बाहर नहीं जांदी।
1: इहो कारण है कि विमेन कल्चरल एसोसिएशन दियां लेडीज बालियां खुश रहिंदियां जिथे मिलदियां नचण लग जांदियां।
0: मैं कदे पुछना बोलियां पाउंदियां ने नचदियां ने, हर तरह की नॉलेज है बसा किवें यूज, मेरे नाल ज्यादा उन्हां नूं पता है कि असीं बसा किवें यूज करदियां, ओह कोई ना असीं पहुंच जाणा तीन तीन बसां बदल के भी आ जांदियां ने, ते मैं कदी बस सर्विस यूज नहीं कीती क्योंकि तीन साहब लै जांदे ने इधर उधर। सो सवलीन बहुत रिसोर्सिज हैगे ने कि जिथों बजुर्ग जिहड़े ने आके घरों बाहर, साढ़े को करीब 150 लेडीज़ ने, ते जदों साड़ी मीटिंग हुंदी 70-80 लेडीज़ हुंदियां ने, हस हस के मिलदियां ने, जफियां पाउंदियां ने, ओह जिहड़ी चीज़ ओह मिस कर रहियां ने उत्थों वाली कि असीं किहनूं जाके गल करिए, असीं कित्थे पहुंचीए, साडे नाल किहड़ा प्यार नाल गल करे, ओह चीज़ उत्थे मिलदी है। सो इह इसे तरह बजुर्गां दियां वी हैगियां ने, बजुर्ग जाते हैं, मैनूं लगता बेंत तक साढ़े कोल इत्थे हैगियां ने, जिहड़े पढ़े लिखे बजुर्ग ने सवलीन उन्हां वास्ते साढ़े कोल जिहड़ियां साहित्यक सभावां ने उह हैगियां ने।
1: ठीक है जी,
0: साहित्यक सभावां दे विचों आके जे अपनी कविता नहीं बोलते तो घट्टो घट्टो साहित मस रखण वाले उत्थे शामिल होके अपने आप नूं प्रफुल्लित जरूर कर लैंदे ने। पांच चार पांच ते साड़ियां इहो जिहे एसोसीएशन ने, पंजाबियां दियां कल्चरल एसोसीएशन ने, जेंट्स दियां ते लेडीज दियां इकट्ठियां वी हैगियां ने, ते ਮੇਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਮਨ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੈਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਸਰੂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ
1: ਜੀ,
0: ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਰਥ ਮਕਨਾਈਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੌਰਥ ਆਫ ਮਕਨਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ NMCS, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਪਨਿਓਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿਮੈਨ ਐਂਟਰਪਨਿਓਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਟਿਫਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਆਲਟਰਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਈ ਯੰਗ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮਦਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
4: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757।
3: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।
5: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ।
6: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ, ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
2: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दियां वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500

रेडियो सरसंगम 94.7 एफएम सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन मंगलवार अगस्त महीने की 18 तरीक सन 2026 हुण तों लैके 5 बजे तक मेरा ते आप जी दा साथ रहेगा। 5 बजे सबलीन कौर जसड़ प्रोग्राम पेश करनगे, 8 बजे जलाल इस्माइल जी प्रोग्राम पेश करनगे राशा वरविद जलाल, 9 बजे पंजाब तों जितेंद्र पन्नू जी नाल प्रोग्राम पेश किया जाएगा। कुछ दिनों की छुट्टी तो बाद जितेंद्र पन्नू जी अज दोबारा हाजिर हो रहे हैं, प्रोग्राम उन्होंने पेश करांगे रात 9 बजे, जो कि सोमवार तो शुक्रवार 9 तो 10 के दरम्यान उन्होंने गलबात की जाती है जी जितेंद्र पन्नू होरां नाल। ये साढ़े अज के बाकी रहिंदे प्रोग्राम। जरा मौसम की गल कर लिए जी, इस वेले 26 डिग्री सैलसीयस है कैलगरी के, जो आने वाले दिनों की गल करिए

0: जरूर कल बात करो। जग्गी टलोंदा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
1: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
4: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
3: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
5: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग।
3: ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है जी। खबरां दे वल चलदे आ। जदों कैनेडा सरकार ने सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी पिछले साल वधाई तां उस तो बाद 6,000 तो वध लोकां ने प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नवे नियमां दे मुताबक हासिल कीते ने। IRCC दे नवे अंकड़ियां दे मुताबक 31 मई तक ये अंकड़े जड़े है जिन्हां विच पता लगता है कि 6100 तो वध लोकां ने यह प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नवे नियमां च हासिल कीते। खास गल यह है कि अमरीका दे जंपल अजिहे लोग इहदे विचों करन वाले 51% सी, सारे जिन्हां नूं अर्जियां जिन्हां दीआं अप्रूव होईआं। कैनेडा दा सिटीजनशिप एक्ट जिहड़ा है बिल C3 दे नाल अमेंड कीता गया, जो कि 15 दिसंबर नूं इफेक्ट होया 2025 नूं। जिहड़े उस तो पहला जिन्हां दा जन्म होया, बिल C3 एक्सपेंड करदा सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी उन्हां लोकां नूं जो ये प्रूव कर सकते ने कि वह कनेडियन इंसेस्टर दे नाल डायरैक्टली जुड़े हुए ने, भावें कि वह इंसेस्टर जिहड़ा है कैनेडा नूं छड्ड चुका होवे। सो एक प्रीवियसली ये जिहड़ा सी इहदे विच इह सीगा, उस तो पहला जिहड़ा निजम सी इस बिल तो पहला दा कि फस्ट जनरेशन बॉर्न आउटसाइड कैनेडा, पहली जनरेशन जिहड़ी कैनेडा तो बाहर जन्म होया जिहदा होया होवे, वह सिटीजनशिप लई बाय डिसेंट जिहड़ी आ वह एलिजिबल सी। ते इहनू ओंटेरियो दी सुपीरियर कोर्ट ने 2023 विच अनकॉन्सटीट्यूशनल करार दिता सी। सो यह जिहड़ी ताज़ा बिल C3 दे जरिए चेंज कीती गई सी, इस विच एलिजिबिलिटी दे नाल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप जिहड़े एप्लीकेशनां लई जो अर्जियां आईयां उन्हां तो उम्मीद सी कि वाकई इदां होवेगा, ते कित्थों कित्थों आईयां ज़्यादा इन्हां दे विच, जिवें पहलां दस चुका कि 6100 तो वध, उन्हां विचों ज़्यादा करके USA तो, ते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो, फिर मैक्सीको तो भी आईयां जी, 20% मैक्सीको तो आईयां, बोलीविया 6%, ते UK तो, ते बोलीविया तो, ते माफ करना UK ते उस दे नाल जिहड़े यूनाइटेड किंगडम दीआं टेरिटरीज हैगीआं ने 3.2%, ते कुछ होर मुल्कां तो भी आईयां। इंडिया तो भी 8-10 एप्लीकेशन आईयां जिन्हां नूं इस तरह अप्रूव किया गया। सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी चेंज जिहड़ी है ये कनेडियनां नूं जिहड़ा है कुछ पुराने डॉक्यूमेंट उन्हां नूं, ते कुछ अपने परिवार की हिस्टरी कईयों नूं फोल्डनी पई। सो अप्रूव्ड जिहड़ियां हैगियां जी बिल C3 दे तहत, वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे लोकां ने वध इस विच बाजी मारी है जी। कनेडा दे विच एक होर सिख कारकुन नूं ड्यूटी टू वॉर्न लैटर दित्ती गई है।